और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो।

यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो उनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया, बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे।

0: और उनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहां तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला उन्होंने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा रखी है और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं।
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔
1: فَهَلْ

0: रहीमा।
1: जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ लड़ाई के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो इस्लाम ले आएंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो खुदा तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बुरी तकलीफ की सजा देगा।
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

उनसे कहो, क्या तुम खुदा को अपनी दीनदारी जतलाते हो? और खुदा तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है, और खुदा हर शय को जानता है।

क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको क्यों कर बनाया और क्यों कर सजाया और उसमें कहीं शिगाफ तक नहीं।

0: चीज।
1: और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई।
0: तबसिरतन वज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब,
1: ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें।

0: ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है, और तुम उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो हमारे अजाब की वईद से डरे उसको कुरान से नसीहत करते रहो।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: वद्दारियाति ज़र्वा,
0: बिखेरने वालियों की कसम जो उड़ाकर बिखेर देती हैं।
1: फल्हामिलाति विक्रा,
0: फिर पानी का बोझ उठाती हैं।
1: फल्जारियाति युस्रा,
0: फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं।
1: फल्मुकस्सिमाति अम्रा,
0: फिर चीजें तकसीम करती हैं।
1: इन्नमा तुअदून लसादिक,
0: कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो सच्चा है।
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ,
0: और इंसाफ का दिन जरूर वाकई होगा।
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ,
0: और आसमान की कसम जिसमें रस्ते हैं।
1: إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ,
0: कि ऐ अहले मक्का तुम एक मुतनाकिज बात में पड़े हुए हो।
1: युफ़कु अन्हु मन उफ़िक,
0: इससे वही फिरता है जो खुदा की तरफ से फेरा जाए।
1: कुतिलल ख़र्रासून,
0: अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों।
1: अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून,
0: जो बेखबरी में भूले हुए हैं।
1: يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ,
0: पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा।
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ,
0: उस दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा।
1: ذُوق

तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि ऐ है, एक तो बुढ़िया और दूसरे बांझ।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: Welcome back, dear listeners. You're tuned into FM 92.6 UCP Ki Dunya, where we're diving into the deep world of language and research, jisme hamare topic ka naam hai Beyond the Classroom, ELT and Research. Hamare saath hain Dr. Habib Ghazi, Ayman, Shamir. So, Dr. Saab, I have again a little question from you. I believe that you have a very vast research background and aapne kafi impact factor journals mein publish bhi kiya hua hai. To ye kis tarah se aapke teaching mein reflect hota hai?
3: हाँ, अब ये एक, जैसे हम पहले ELT की बात कर रहे थे, तो ये उससे बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है.
2: बिल्कुल सर.
3: जब आप कोई ऐसा कंटेंट जिसे एकेडमिकली जिसका ताल्लुक रिसर्च से हो और ऑब्वियसली उसके बैकग्राउंड में टीचिंग है, तो ये टीचिंग मुख्तलिफ है. ये टीचिंग इस तरह मुख्तलिफ है कि लेट्स सपोज आप जैसे BS लेवल पे, ये शामिर मेरे साथ बैठा हुआ है, इज़ माय स्टूडेंट, इज़ अ सेवन्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, तो आई टीच दिस क्लास रिसर्च मेथडोलॉजी. और भी कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तो ये आमतौर पर ये कॉन्टेंट आप जनरली एक लेक्चर मोड में देते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज स्किल्स नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. बट लाइक एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि आपकी क्लास कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड हो जाए. हो भी सकती है, हो जाती भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ एफर्ट्स चाहिए. ये तो खैर लाइक शामिर इज इन अ बेटर पोजिशन टू कमेंट ऑन वेदर माई क्लास इज कम्प्लीटली लेक्चर फोकस्ड, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड.
4: मैं आपके देखिए, रिसर्च इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी एंड इट इज द आंसर टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो एज आई एम द स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, तो आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड, सो रिसर्च हेल्प मी रिजॉल्व दैट क्वेश्चन अंडर योर गाइडेंस.
3: थैंक यू. अब आपका सवाल था कि जो मेरी रिसर्च, जो पब्लिश रिसर्च है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है जो स्टूडेंट्स की टीचिंग के हवाले से. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हायर एजुकेशन के अंदर जो स्टडीज़ हैं, उसमें रिसर्च के ऊपर मेन फोकस है. अब चूंकि मैं एक इंटरनेशनली पब्लिश्ड ऑथर हूँ, तो मैं वॉइस स्पिरिट और वॉइस स्किल्स जो मैंने ओवर द इयर्स एक्वायर की हैं, वो स्टूडेंट्स में मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ. नॉट ओनली एट, बिकॉज आई एम टीचिंग एट PhD लेवल 2, सो वो जो रिसर्च स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस रखते हैं और वो स्टूडेंट्स में उन्हें इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं. अब उसके ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स व्हेन वी डू दैट, तो उसका कोई मेजरिंग क्राइटेरिया भी होगा. तो हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो MS लेवल के हैं और जो PhD लेवल के हैं, दे हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल इवन बिफोर कम्प्लीटिंग देयर स्टडीज. तो मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी स्टूडेंट्स के हवाले से ये काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है.
4: सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी बात में एड ऑन करना चाहूँगा कि रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल थिंग इन आवर लाइफ. जैसे हम क्या नाम है, अगर टीचिंग की जॉब के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो उधर भी दे आस्क फॉर योर रिसर्च वर्क, ठीक है, तो वही प्रेफर किया जाएगा जिसका रिसर्च वर्क ज़्यादा अच्छा होगा. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज, तो वो भी आपका रिसर्च वर्क देखते हैं. तो इसकी बहुत अहमियत है मेरे ख्याल से रिसर्च की, आपकी ज़िंदगी में भी, मसले हल करने में भी, और आपकी एजुकेशन में भी.
3: बिल्कुल. और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ शामिर, कि रिसर्च की अदरवाइज लाइफ में भी, यानी इसको आप किसी आइसोलेशन में नहीं देख सकते. यानी कम से कम मैं इन चीज़ों को, खा वो रिसर्च का एस्पेक्ट हो, टीचिंग का एस्पेक्ट हो, या बाकी जैसे आपकी लाइफ है, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक यूनिटी में देखता हूँ, इनको आइसोलेशन में नहीं देखता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, तो अब हमारा एक बहुत सब्सटेंशियल जो कॉन्टेंट है वो रिसर्च एथिक्स पे है.
4: बिल्कुल.
3: तो एथिक्स से मुराद, यानी
4: एथिक्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू थिंग्स. जैसे अगर आप कोई सैंपल्स ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे आपने कंसेंट लाजमी लेना है. तो इस तरह से मजीद काफी एथिक्स हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं.
3: इससे हटके भी सिर्फ कंसेंट की बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नाउ यू आर ट्राइंग टू create some potential research questions.
4: Yeah.
3: तो जब आप research questions को आप create करें तो उसमें भी आपकी ethical considerations को prioritize किया हो कि हम कोई ऐसा aspect तो life में नहीं investigate करना चाह रहे लोगों के बारे में जो के किसी वल्नरेबल कम्युनिटी के हवाले से हार्मफुल हो,
4: जो किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट करे,
3: सेंटीमेंट्स को हर्ट करे,
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: और इसी तरह जैसे जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको फर्दर मार्जिनलाइज कर दिया जाए,
4: या हम तो, किसी के साथ पर्सनल तो नहीं हो रहे, जो सैंपल्स हम लेके जा रहे हैं या हम जो सर्वेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं है बंदे से,
3: exactly.
4: आपके रेलिवेंट टू द रिसर्च टॉपिक क्वेश्चन होने चाहिए, ये भी एथिकल कंसिडरेशन में आता है.
3: सो एथिक्स, रिसर्च, लाइफ, तो ये एक यूनिट के तौर पे इनको देखना.
2: राइट. तो सर ये तो था आपकी क्लास में आप किस तरह से रिसर्च पढ़ाते हैं. शामिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि हाउ ही हैज बीन द पार्ट ऑफ दीज क्लासेस. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ओवरऑल इंग्लिश डिपार्टमेंट में रिसर्च का क्या सिनारियो होता है, लाइक हाउ यू गाइज टीच इट एंड हाउ यू टेक इट इन द इंटायर डिपार्टमेंट.
3: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत वाइब्रेंट रिसर्च कल्चर है इंग्लिश डिपार्टमेंट में. और हमारे बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हजरात हैं, इट्स नॉट जस्ट मी लाइक हु हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, देर आर बेटर रिसर्चर्स देन आई एम एंड लाइक मैनी ऑफ देम हैव पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स. और वो वही रिसर्च कल्चर जैसे कि मैंने पहले बात की थी अपने हवाले से, वो भी बड़ा स्ट्रांगली इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर. और हमारे जो ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स हैं जैसे एमएस वाले हैं या पीएचडी वाले हैं, वो उनके साथ को ऑथरिंग हो रही है. तो एंड लाइक मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स करेंटली एनरोल्ड इन एमएस एंड पीएचडी क्लासेस हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स.
2: बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, नो डाउट.
3: और अब शामिर है जैसे, ये तो अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, इनके हाँ भी हम जो है ना एक टर्म पेपर के ऊपर हम बहुत इंसिस्ट करते हैं. और जैसे इस क्लास में इट्स अ ह्यूज क्लास लाइक सम 47 स्टूडेंट्स, तो इनमें से कई बच्चों ने दे आर मोर देन हाफ वे थ्रू देयर रिसर्च आर्टिकल्स.
4: जी ये चीज़ भी एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशंस जो कि हम मतलब स्लाइड रीडिंग भी कर देते हैं अक्सर या क्रैमिंग भी हो जाती है, उसकी जगह वी आर डूइंग एक्चुअली द प्रैक्टिकल वर्क. हम रिसर्च कर रहे हैं जिसका हमें इन फ्यूचर फायदा भी होगा, वी विल नो हाउ टू डू द थिंग्स इन दैट वे. और अगर मैं इसमें क्लास इन्वायरमेंट की बात ऐड कर दूं तो क्लास इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से बहुत फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होता है. जैसे आप हमेशा हमें क्या नाम है क्वेश्चंस पे अप्रिशिएट करते हैं और आप खुद इंगेज करते हैं कि मेरे से क्वेश्चन करें, आप इस चीज़ पे खुश भी होते हैं बाकायदा नज़र आता है. तो ये सारी चीज़ें हमारी मोटिवेशन भी इससे आती है कि आप इंकरेज भी कर रहे हैं हमें क्वेश्चन वगैरह करने के लिए. और आपकी असिस्टेंस दैट यू ऑफर्ड अस कि आप किसी भी वक्त मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं अदर देन द क्लास, आपको कोई कंसर्न हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे पास आके उस पर गाइडलाइंस ले सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग.
3: एंड आई एम श्योर लाइक मेनी अदर टीचर्स आर डूइंग द सेम.
4: या दे आर.
3: तो ये इससे हम ओवरऑल जो है ना जो यूसीपी में एक जनरली एक रिसर्च के हवाले से जो एक एम्फेसिस है हम उसके साथ भी डिपार्टमेंट को अलाइन करवाते हैं.
2: Righto, sir. So, as we wrap up today's insightful discussion on Beyond Classroom and ELT research, we hope that this session has sparked new ideas and perspective on how language teaching research that can extend beyond the traditional setting. मतलब काफी कुछ हमने आज जाना कि foreign में किस तरह से पढ़ाया जाता है, हम किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं. तो I hope it was very interesting. Well, a big thank you to our esteemed guests and enthusiastic listeners as well for being a part of this engaging conversation. So please stay curious, keep exploring, continue pushing the boundaries of learning until next time. Because we have already been doing shows aur hum inshallah next time aapke paas ek aur new topic ke saath, kuch aur new ideas ke saath aayenge. So this is your host Nayab Afzal. Keep tuning in for more inspiration and more discussions. Take care and goodbye.

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
0: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अब मैं आपकी मेज़बान तहज़ीन अली आपको प्रोग्राम नख़्ल अदब में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा, आपने कुछ नया किया होगा, और अगर कहीं पे नेगेटिविटी आई भी होगी तो आपने उसको पॉजिटिव तरीके से ही हल किया होगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात करनी है वो ज़रा हट के है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से मुतल्लिक, उनके मसाइल और कैसे वो बेहतर हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज जिनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मोहम्मद वलीद खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वलीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मुझे अंदाज़ा है कि कितनी टफ रूटीन है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग एंड अदर स्टफ।
3: बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो शोबाए सहाफत से है, और जो है वो मैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 2017 में मैंने आगाज़ किया था, और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स से मोहब्बत की वजह से, स्पोर्ट्स मैनशिप होने की वजह से और स्पोर्ट्स मैन होने की वजह से जो है मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया कि मुझे सहाफत में जाना चाहिए। तो फिर सहाफत चलती रही और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी साथ अटैच होती गईं, और प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान चला गया। प्रोडक्शन भी की और खूब की पाकिस्तान के लिए। तो अब जो है वो आजकल जो है वो प्रोडक्शन की तरफ भी रुझान है और सहाफत की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं।
2: वलीद, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस वक्त हमारी सहाफत में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इस वक्त क्या सबसे बड़े मसाइल हैं?
3: बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो शायद बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को हम लोगों ने वन साइडेड जर्नलिज्म कर दिया है कि क्रिकेट जिसको आती है, क्रिकेट के जिसको दो चार खिलाड़ियों का पता है वो खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहने लग पड़ा है। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होना जो है वो एक बड़े एजाज की बात है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करना होता है, इंटरनेशनल गेम्स को कवर करना होता है। जैसे हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के सफीर होते हैं, इसी तरह से हम जो हैं वो भी उन खिलाड़ियों को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये कि आप किसी खिलाड़ी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आगे बात होती है, पाकिस्तान का इमेज होता है। तो उस इमेज को भी देखते हुए पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो है वो गेम्स में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो क्रिकेट देख के, क्रिकेट पढ़ के और क्रिकेट को समझ के सहाफत में आए हैं। तो ये जो है खेलों से ताल्लुक जो है एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, ये बहुत जरूरी है। जब तक एक जर्नलिस्ट का खेलों में इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस तरह से सहाफत कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि एक सहाफी का काम होता है कि खबर देना। तो खबर जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, खबर ढूंढनी पड़ती है, और खासकर बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जिनको हमें रोकना पड़ता है कि इसमें पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो उनका इमेज है एक चीज। तो हमें उस चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो निभाना होता है, उस खबर को भी आगे आवाम तक पहुंचाना होता है। आजकल आपने मसाइल की बात की, तो सहाफत में ओवरऑल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सहाफत में जो है वो कुछ इदारों की तरफ से भी मसाइल हैं, कुछ हकूमती नुमाइंदे उनकी तरफ से भी मसाइल हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि सहाफत में गलबा पा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मसाइल एज सच इस तरह से हैं कि बहुत से सहाफ़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके सहाफत की जिम्मेदारियां निभाते हैं उन पर पाबंदियां आजकल आयद करना शुरू कर दी गई हैं, उनको जो है वो मैचेस कवर करने से रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला आजकल सहाफ़ियों को तो यही दरपेश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाबंदियाँ लग रही हैं उनका सामना कर रहे हैं और उनके लिए मुज़ाहमत भी कर रहे हैं।
2: آپ نے بات کی تھی کہ سپورٹس صحافت کے لیے ضروری ہے کہ صحافت پڑھی جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سپورٹس جرنلزم کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن یا سپورٹس میں باقاعدہ تعلیم لے کے آئیں؟
3: بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس میں کہ کیا کھیلوں میں ان کا انٹرسٹ, ان کو کھلاڑی بھی ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے کھلاڑی ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کو ایز اے جرنلسٹ بھی جو ہے اس چیز کو سیکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ کھلاڑی ہوں گے تو وہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کو رولز پتا ہوں گے گیم کے, آپ کو پتا ہوگا کہ اتنے آؤٹ ہیں, اتنی بال سائڈز ہیں, اتنی چیزیں ہیں, ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پتا ہوں گی. تو ایک کھلاڑی کے لیے صحافت میں جانا بھی ایک اعزاز کی بات ہے, اور جب تک ایک صحافی جو ہے وہ پراپر طریقے سے اسپورٹس کو دیکھے گا نہیں, اسپورٹس کو سمجھے گا نہیں, تو اس کو اس طرح سے صحافت آئے گی نہیں. آج کل ہمارے جرنلسٹ بھی جس کے پاس ایک کیمرے والا فون ہے اور ایک اچھا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اب خود کو صحافی کہنے لگ پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ولاگز کرتے ہیں, تجزیے دیتے ہیں اپنے, لیکن جو ایک کرکٹ ایکسپرٹ کا تجزیہ ہے, جو ایک سپورٹس جرنلسٹ کا تجزیہ ہے, وہ ان سے بہت مختلف ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا.
2: بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ سپورٹ جرنلزم کے کیا مسائل ہیں. یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.
4: جدو راتی چن نکل دائے, جدو کالے پتل چھاندے نے, اس بے رنگی جی دنیا وچ کچھ لوگ نکل

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, उनके मसाइल पर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर। अब अगर हम बात करें कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त जर्नलिज्म की दुनिया में आ गए हैं और अब वो आके हर मैच के बाद अपना तबसरा दे रहे होते हैं, तो अगर आप एक हल्का सा कमेंट कर दें कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है।
1: बिल्कुल, आपने कहा कि खिलाड़ी आ गए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ही जो है वो फसाद की जड़ है। मैं इस चीज़ पे जो है वो राय रखता हूँ ये वाली कि सोशल मीडिया ही फसाद की जड़ है। वो इसलिए भी, शायद ये मेरे खिलाफ भी जाए कि आज की दौर में आप डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स हो के तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठ के और डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप जब सोशल मीडिया का यूज़ गलत करेंगे ना तो बहुत नुकसान देगा, और हमारी 80% आवाम उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं बैठा हूँ, मैं टीवी पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी है कि मैंने ये अल्फाज कहना है, ये नहीं कहना, ये मेरे टीवी पे जाएगा, ये मेरी आवाम को जाना चाहिए और ये नहीं जाना चाहिए। क्या मैं इस खिलाड़ी पे तबसरा कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के मैं जब तक तनकीद नहीं करूंगा, जब तक मैं गालम गलोच नहीं करूंगा, मुझे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। हमारे बहुत से साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो इस रुझान की तरफ आ चुके हैं कि वो सोशल मीडिया चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स बनाने के बाद वो बकायदा उसके ऊपर जो है वो तबसरे करते हैं कि पाकिस्तान की इस खिलाड़ी को ये है, इस खिलाड़ी को ये, और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये लोग चैनल पे बैठे हों तो शायद ये लोग उस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हमने बहुत से खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जो टीवी पे बैठ के तो बड़ी जिम्मेदाराना बात करते हैं, जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो जिम्मेदाराना बात उनकी खत्म हो जाती है, वो व्यूअरशिप के लिए बात करने लग पड़ते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो टीवी पे बैठ के तो बड़े महज़ब तरीके से खिलाड़ियों को बैक भी कर रहे होते हैं, तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके YouTube चैनल पे जाएंगे तो उनके थंबनेल से आपको ये तासुर जा रहा होता है कि इसने तो इस वीडियो में उड़ा दिया इस खिलाड़ी को। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसका हमारे खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब अगर एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उसके ऊपर बकायदा ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो ट्रेंड्स हम जैसे सहाफ़ियों को मिला के ही चलाए जाते हैं, वो सहाफ़ी ही ट्रेंड्स चलाते हैं क्योंकि उनकी ट्विटर पे रीच होती है, तो वो सहाफ़ी बैठ के जो है वो ट्विटर ट्रेंड सेट करते हैं और अपनी मर्जी के खिलाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आपको हर खिलाड़ी की बात करनी चाहिए। तो जब सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है हमारे खिलाड़ियों को, इवन कि हमारी टीम सिलेक्शंस को भी इफेक्ट करता है। हम अब बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छुपाता है, वो नहीं बताता मीडिया को कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, खिलाड़ियों पे गलत चीज़ का तासुर जाएगा। इसकी लेटेस्ट जो अभी मिसाल वो ये है कि एक वाकया हुआ है इंग्लैंड में, और उस वाक्य के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वाक्य पे ये कहा कि हम उस वाक्य को लीगल असिस्टेंस देंगे अपने प्लेयर को, उसके बाद वो जो भी अदालत का फैसला होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो की है और अपने सोशल मीडिया को तमाशा बनाने नहीं दिया। सोशल मीडिया पे जब तमाशा चीज का बनता है तो वो खिलाड़ी के लिए भी नुकसानदेह होता है और एक इंस्टीट्यूट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक रोल तो है हमारी लाइफ के ऊपर, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें और पॉजिटिव ही रखें तो ये बहुत जो है वो इफेक्टिव भी होगा और हमारे सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो पॉजिटिव तरीके से उसको यूज करेंगे, क्योंकि व्यूअरशिप जो है, हमने शायद अनफॉर्चुनेटली अपनी व्यूअरशिप को ये आदत डाल दी है कि हम तनकीद करेंगे तो आप हमें देखें, अगर हम तनकीद नहीं कर रहे तो आप हमें ना देखें। हमें क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट देना चाहिए, क्वान्टिटी ऑफ कॉन्टेंट नहीं देना चाहिए।
0: और इसी में फैन पेजेस को कैसे देखते हैं आप?
1: बिल्कुल, आपने फैन पेजेस की भी बात की है। अब तो फैन पेजेस जो है वो बहुत से फैंस बना लेते हैं और वह जनून की हद तक होते हैं। तो वो बहुत से लोग जो होते हैं, वो क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, वो खुद भी फीड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उन फैन पेजेस को, उनके भाई बहनों दोस्तों ने बनाए होते हैं, फैमिली ने बनाए होते हैं, तो वो उनको फीड भी कर रहे होते हैं। जो खिलाड़ी खुद नहीं ना बात करना चाहता, वो उनका फैन पेज बात कर देता है और उसके बाद वो बात जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है और वो बात निकलते निकलते पता नहीं कहां तक चली जाती है। तो मेरे ख्याल से फैन पेजेस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फैन पेजेस को क्रिकेटिंग नॉलेज पे बात करनी चाहिए, क्रिकेट सेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि क्रिकेटर्स चाम के ऊपर बात करनी चाहिए। तो जब तक आप क्रिकेटर्स के चाम में मुब्तला होंगे तो ना आप सहाफ़ी हैं, ना आप कोई एंकर पर्सन हैं, ना आप कोई ऐसी सोर्स हैं जिसपे के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि आप हमेशा बात करेंगे तो उस खिलाड़ी की फेवर में बात करेंगे, आप उसके फैन बन के बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, और उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ना कि किसी प्लेयर की साइड लेनी चाहिए, किसी प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, जो देख रहा है उसके ऊपर बात करते हैं।
0: हमने बात तो की थी प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर मैं आपसे

0: था, क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि स्पोर्ट जर्नलिज्म में बहुत कम लोग जाते हैं। खैर अब तो जर्नलिज्म भी बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं जर्नलिज्म में जाने के भी, और बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को चूज ही नहीं करते कि नहीं जर्नलिज्म तो एक लिमिटेड सोर्स है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, जर्नलिज्म में जाना चाहिए और स्पोर्ट जर्नलिज्म में खास तौर पर जाना चाहिए। ये मेरी नज़र में ये सबसे सेफ बीट है खवातीन के लिए, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और वैसे ही एक एनर्जेटिक है, तो हमें स्पोर्ट्स की तरफ इन ख्वातीन को लाना चाहिए और ख्वातीन को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में फोकस करवाना चाहिए, ना कि दीगर बीट्स में जाएं या इन हाउस काम करें। आए आके काम करें। बहुत सी नौजवान ख्वातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाह रही हैं और वो काम भी कर रही हैं और हमसे शायद अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए और उनका माइंड जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ होना चाहिए। हमारी एक अनफॉर्चुनेटली बात ये भी है कि हम जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाते हैं ख्वातीन खासकर, तो उनके माइंडसेट में आ जाता है कि मैं इस प्लेयर की मीडिया मैनेजर लग जाऊं, इस टीम की मीडिया मैनेजर लग जाऊं। तो वो मीडिया मैनेजरशिप से निकल के स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनना चाहिए, ना कि आपको मीडिया मैनेजर और उस प्लेयर की प्रोफाइलिंग में लग जाना चाहिए, आपको उस फील्ड के साथ खेलना चाहिए।
1: थैंक यू सो मच वलीद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रॉब्लम्स को भी और उनके हल को भी, एंड यू आर डूइंग टू गुड। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुबारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसीलिए किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ इधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेर जाते हैं जो भी होते हैं हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई की जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी कल का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे बब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है वो मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल से पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेदाद और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Good morning, dear listeners. You are tuned into UCP Faculty Hour, and I'm your host, Nayab Afzal. I'm a lecturer at English Language Center, Faculty of Languages and Literature. Well, today we have a fantastic panel with us. Joining me is Dr. Habib Ghazi, who is an Associate Professor of English and Director of English Language Center. We also have Ayman Saqib, a bright student from the third semester of the Faculty of Management Sciences, and Mr. Shamir, a seventh semester student from Department of English. Well, I believe it's going to be an insightful session, so please stay tuned as we dive into an engaging discussion. Well, dear listeners, I'm going to ask my first question to Dr. Habib Ghazi. Having over 20 years of experience in teaching language and research across different countries, sir, jaise ki aapne UAE mein padhaya, Saudi Arabia mein padhaya, and shayad England mein bhi padhaya. So what is your view? I mean, it has a significant difference between teaching in Pakistan or these other countries.
3: Thank you very much, Nayab. First of all, thanks for having me today. अब ये जो आपका सवाल है, इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा, डिफरेंस टीचिंग के हवाले से। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, द वे इंग्लिश इज टॉट इन पाकिस्तान एंड द वे इट इज टॉट अब्रॉड, सो लेट्स डेल्व इनटू इट फर्स्ट।
2: बिल्कुल।
3: उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर, अब जैसे हमारे यहाँ आप अगर स्कूल की एजुकेशन देखें, and primarily I'm talking about our schools which follow conventional scheme of study,
2: right?
3: तो उसमें English language teaching के हवाले से आपका सारा जो emphasis है वो रहता है reading और writing के ऊपर।
2: बिल्कुल सर, ऐसा ही है।
3: और जो assessment है वो भी reading and writing focused है। Not only that, उसमें जो एक learning, एक रट्टा के जरिए जो एक लर्निंग है, उस पे ज्यादा फोकस है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो अब जब आपके स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, लाइक लेट मी कॉल देम फ्रेशर्स, फर्स्ट ईयर बीएस में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेके यहाँ पे आता है, तो उसके पास आई ऑलवेज बिलीव्ड के जो वोकैबुलरी और ग्रामर के हवाले से उनका इनपुट उनके यहाँ बहुत ज्यादा है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन the problem is they have never been given an opportunity to practice language skills. Aur skills se yahan pe meri murad 4 different skills hain, jaise listening hai, speaking hai, reading hai, writing hai, and all these skills are equally important. To aapki do skills 12 saal school mein ignore hui hoti hain.
2: Aisa hi hai sir.
3: To agar hum isi ko leke chalenge aage, to aap phir wahi grammar padh rahe honge, वही कंपोजिशन लिख रहे होंगे, और वही आपकी जो कंसंट्रेशन है वो लर्निंग बाय रोट रट्टे पे ही रहेगी। अब आपने जब ये कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है कि अगर आप यूएई में हैं, एंड बाय दैट आई मीन लाइक ऑल गल्फ कंट्रीज, और जहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गल्फ कंट्रीज, ग्लोबली आप जापान की मिसाल ले लें, आप चाइना की ले लें, आप कोरिया की ले लें, यू नो लाइक बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास जहाँ पे इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाया जाता है विद अ फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो वो ये सारी स्किल्स के ऊपर क्लासरूम के अंदर इक्वल एम्फेसिस के साथ चलते हैं। एक ये डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि क्लासेस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, यानी ज्यादा आप स्टूडेंट से काम करवाते हैं, एंड योर रोल एज ए टीचर इज जस्ट दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर. यू आर फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स इन कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज इन द क्लासरूम. तो ये एक मेजर डिफरेंस है, और यहाँ पे यूसीपी में मैंने उसी डिफरेंस को अकोमोडेट करने की कोशिश की है बाय इंट्रोड्यूसिंग, एक तो कंटेंट चेंज किया, और कंटेंट हम कन्वेंशनल जो कंटेंट था उससे निकले, तो अब हमारे पास वो कंटेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जो के कहीं और अवेलेबल है. यानी दिस वे वी हैव अलाइंड आवरसेल्व्स विद ग्लोबल ईएलटी प्रैक्टिसेस. अब इसके साथ जो एक और चीज जुड़ी हुई है कि ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, बिकॉज टीचर्स को भी उसी हवाले से प्रॉपरली ट्रेंड किया गया है कि आपने फोर डिफरेंट स्किल्स को कैसे इम्पार्ट करना है और स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है. और जो है जैसे कि लाइक आई ऑलवेज यूज टू से कि अगर इसको हम एक डिवीजन में जाएं तो 70-30 की रेशियो है कि 30% टाइम जो है टीचर टॉकिंग टाइम, वो टीचर्स अगर 30% ऑक्यूपाई कर रहे हैं और 70% वो स्टूडेंट पे जा रहा है, तो इससे मैं ये कहूँगा कि दिस इज एन आइडियल लेसन.
2: सर, आपकी इस बात से मुझे याद आ गया, जब हम पढ़ते होते थे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है इंग्लिश की क्लास पढ़ाने जो हमारे टीचर्स आते थे इंग्लिश के, वो हमें उर्दू में पढ़ाते थे इंग्लिश की क्लास. मतलब द स्पीकिंग और जो टीचर का इंस्ट्रक्शंस देने का मोड था वो हमेशा उर्दू में होता था. आई होप मेरे साथ शामीर और एमन भी एग्री करेंगे इस बात पे, बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स एंड दे हैव बीन फेसिंग दिस. तो एमन और शामीर, आप क्या कहेंगे इस बारे में, इंग्लिश अब तक किस तरह से पढ़ते आए?
4: अब तक इंग्लिश जो हमने पढ़ी है मोस्टली हमारी क्लास में आके उर्दू में कन्वर्सेशन चलती थी, ठीक है. लेकिन सरकाजी ने जो कोर्स हमें रिसर्च मेथडोलॉजी का पढ़ाया, सरकाजी यूजेस इंग्लिश मोस्टली इन द क्लासरूम, बट फॉर द बेटर कम्प्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स हु लैक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ही यूजेस बायलिंगुअल लैंग्वेजेस. ये उर्दू में भी कन्वर्सेशन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ बेहतर आ सके जिनको इंग्लिश पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है. तो ये मेरा पॉइंट.
2: बिल्कुल एमन, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे, क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से दोनों तरह के मोड से किया हुआ है ना, व्हेन योर टीचर वर कमिंग एंड गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड इन उर्दू एज वेल. बिकॉज मुझे याद पड़ता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर किसी और कन्वेंशनल स्टाइल से पढ़ा और सेकेंड सेमेस्टर आपने कैम्ब्रिज स्टाइल से पढ़ा, तो आपका इनटेक क्या है इस पे?
5: आई डू बिलीव दैट एज आई वर टॉट बाय यू, आई रियली लाइक्ड योर स्टाइल, बिकॉज बिफोर हैंड व्हेन आई वाज लर्निंग इट वाज दैट आई वाज doing the same things I had been doing since last 12 years, as Sir Kazi said, right? But when the system changed, I had a chance to improve my listening and especially my writing skills, I remember. Especially when it comes to the listening skills, many a times when we are watching movies or anything, we're just turning on our subtitles and doing that stuff. But when we had the chances to do quizzes and we had to listen stuff, we realized that, oh, this is something that we need to learn or we are learning, and it was a very good help, because bahut baar aisa hota hai ki hame jab ek cheez ki insight mil jati hai ki oh we have to work on it, that's the main thing, jaise sir ne kaha ki ek provider hota hai, ek facilitator hota hai, so that's something that I believe.
2: तो सर काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हमें इस पे मिले, तो आपको सर ऐसा क्या चीज थी, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू ब्रिंग दिस न्यू मेथोडोलॉजी हियर इन पाकिस्तान हियर एट यूसीपी?
3: वो तो जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक स्ट्रांग रियलाइजेशन के टीचर्स जैसे उसे डेवलप करने की एक कोशिश कर रहे हैं स्किल, वो एक राइट मोड नहीं है. और अब मेरा जो क्योंकि एक्सपोजर जो था वो इंटरनेशनल था, और मैं उसको एक्सपीरियंस करके, रादर इट्स माय लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ से लाइक 12-13 इयर्स इन यू नो लाइक इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरे लिए ये मुश्किल इसको समझना तो नहीं था, समझना बस यही था कि इसको क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो उस हवाले से एक डिसीजन लेना था, और ऑब्वियसली आपने जब डिसीजन लेते हैं तो दो तीन उसके पहलू हैं कि स्टूडेंट्स उसको कैसे लेंगे, कंटेंट जो हमने चेंज करना है उसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और टीचर्स जो हैं लाइक आई ऑलवेज बिलीव्ड कि हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, तो उनको जस्ट एक मतलब सेशंस प्रोवाइड करने थे ट्रेनिंग के हवाले से. तो ये सारा हमने बिफोर हैंड ہم نے اس کو پراپرلی اس کو پہلے ویژولائز کیا, اس کے اوپر میتھڈالوجیز طے کی کہ یہ ان تینوں ایسپیکٹس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا, اور پھر ہم چل پڑے اور یہ ہو گیا.
2: جی آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا, جہاں ہمارا اس وقت ایک شو چل رہا ہے یو سی پی فیکلٹی آر, جس کا مین فوکس ہے اس وقت بیونڈ دا کلاس روم, ELT اینڈ ریسرچ. ہم ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا میوزیکل بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.

0: Studios.
1: University Studios.
2: Where knowledge is empowerment.
1: This is
3: 92.6.
4: Welcome back, dear listeners. You're tuned into FM 92.6 UCP Ki Dunya, where we're diving into the deep world of language and research, jismein hamare topic ka naam hai Beyond the Classroom, ELT and Research. Hamare saath hain Dr. Habib Ghazi, Ayman, Shamir. So, Dr. Saab, I have again a little question from you. I believe that you have a very vast research background and aapne kafi impact factor journals mein publish bhi kiya hua hai. To ye kis tarah se aapke teaching mein reflect hota hai?
5: हाँ, अब ये एक, जैसे हम पहले ELT की बात कर रहे थे, तो ये उससे बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है.
4: बिल्कुल सर.
5: जब आप कोई ऐसा कंटेंट जिसे एकेडमिकली जिसका ताल्लुक रिसर्च से हो और ऑब्वियसली उसके बैकग्राउंड में टीचिंग है, तो ये टीचिंग मुख्तलिफ है. ये टीचिंग इस तरह मुख्तलिफ है कि लेट्स सपोज आप जैसे BS लेवल पे, ये शामिर मेरे साथ बैठा हुआ है, इज़ माय स्टूडेंट, इज़ अ सेवन सेमेस्टर स्टूडेंट. तो आई टीच दिस क्लास रिसर्च मेथडोलॉजी. और भी कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तो ये आमतौर पर ये कॉन्टेंट आप जनरली एक लेक्चर मोड में देते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज स्किल्स नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. बट लाइक एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि आपकी क्लास कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड हो जाए. हो भी सकती है, हो जाती भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ एफर्ट्स चाहिए. ये तो खैर लाइक शामिर इज इन अ बेटर पोजिशन टू कमेंट ऑन वेदर माई क्लास इज कम्प्लीटली लेक्चर फोकस, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड.
6: मैं आपके देखिए, रिसर्च इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी एंड इट इज द आंसर टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो एज आई एम द स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, तो आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड, सो रिसर्च हेल्प मी रिजॉल्व दैट क्वेश्चन अंडर योर गाइडेंस.
5: थैंक यू. अब आपका सवाल था कि जो मेरी रिसर्च, जो पब्लिश रिसर्च है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है जो स्टूडेंट्स की टीचिंग के हवाले से. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हायर एजुकेशन के अंदर जो स्टडीज़ हैं, उसमें रिसर्च के ऊपर मेन फोकस है. अब चूंकि मैं एक इंटरनेशनली पब्लिश्ड ऑथर हूँ, तो मैं वही स्पिरिट और वही स्किल्स जो मैंने ओवर द ईयर्स एक्वायर की हैं, वो स्टूडेंट्स में मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ. नॉट ओनली एट, बिकॉज आई एम टीचिंग एट PhD लेवल 2, सो वो जो रिसर्च स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस रखते हैं और वो स्टूडेंट्स में उन्हें इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं. अब उसके ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स व्हेन वी डू दैट, तो उसका कोई मेजरिंग क्राइटेरिया भी होगा. तो हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो MS लेवल के हैं और जो PhD लेवल के हैं, दे हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल इवन बिफोर कम्प्लीटिंग देयर स्टडीज. तो मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी स्टूडेंट्स के हवाले से ये काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है.
6: सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी बात में एड ऑन करना चाहूँगा कि रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल थिंग इन आवर लाइफ. जैसे हम क्या नाम है, अगर टीचिंग की जॉब के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो उधर भी दे आस्क फॉर योर रिसर्च वर्क, ठीक है, तो वही प्रेफर किया जाएगा जिसका रिसर्च वर्क ज़्यादा अच्छा होगा. एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज, तो वो भी आपका रिसर्च वर्क देखते हैं. तो इसकी बहुत अहमियत है मेरे ख्याल से रिसर्च की, आपकी ज़िंदगी में भी, मसले हल करने में भी, और आपकी एजुकेशन में भी.
5: बिल्कुल. और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ शामिर, के रिसर्च की अदरवाइज लाइफ में भी, यानी इसको आप किसी आइसोलेशन में नहीं देख सकते. यानी कम से कम मैं इन चीज़ों को, खा वो रिसर्च का एस्पेक्ट हो, टीचिंग का एस्पेक्ट हो, या बाकी जैसे आपकी लाइफ है, तो इन सारी चीज़ों को मैं एक यूनिटी में देखता हूँ, इनको आइसोलेशन में नहीं देखता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, तो अब हमारा एक बहुत सब्सटेंशियल जो कॉन्टेंट है वो रिसर्च एथिक्स पे है.
6: बिल्कुल.
5: तो एथिक्स से मुराद, यानी
6: एथिक्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू थिंग्स. जैसे अगर आप कोई सैंपल्स ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो उनसे आपने कंसेंट लाजमी लेना. तो इस तरह से मजीद काफी एथिक्स हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं.
5: इससे हटके भी सिर्फ कंसेंट की बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नाउ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट सम पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चन. तो जब आप रिसर्च क्वेश्चन को आप क्रिएट करें तो उसमें भी आपकी एथिकल कंसिडरेशन को प्रायोरिटाइज किया हो कि हम कोई ऐसा ऐसा एस्पेक्ट तो लाइफ में नहीं इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे लोगों के बारे में जो कि किसी वल्नरेबल कम्युनिटी के हवाले से हार्मफुल हो,
6: जो किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट करे,
5: सेंटीमेंट्स को हर्ट करे.
6: बिल्कुल, बिल्कुल.
5: और इसी तरह जैसे जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको फर्दर मार्जिनलाइज कर दिया जाए,
6: या हम किसी के साथ पर्सनल तो नहीं हो रहे, जो सैंपल्स हम लेके जा रहे हैं या हम जो सर्वेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस तो नहीं है बंदे से.
5: Exactly.
6: आपके रेलिवेंट टू द रिसर्च टॉपिक क्वेश्चंस होने चाहिए, ये भी एथिकल कंसीडरेशंस में आता है.
5: सो एथिक्स, रिसर्च, लाइफ, तो ये एक यूनिट के तौर पे इनको इनको देखना.
4: राइट. तो सर ये तो था आपकी क्लास में आप किस तरह से रिसर्च पढ़ाते हैं. शामिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि हाउ ही हैज बीन द पार्ट ऑफ दीज क्लासेस. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ओवरऑल इंग्लिश डिपार्टमेंट में रिसर्च का क्या सिनारियो होता है, लाइक हाउ यू गाइस टीच इट एंड हाउ यू टेक इट इन द एंटायर डिपार्टमेंट.
5: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत वाइब्रेंट रिसर्च कल्चर है इंग्लिश डिपार्टमेंट में. और हमारे बहुत सारे जो प्रोफेसर हजरात हैं, इट्स नॉट जस्ट मी लाइक हु हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, देर आर बेटर रिसर्चर्स देन आई एम एंड लाइक मैनी ऑफ देम हैव पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स. और वो वही रिसर्च कल्चर जैसे कि मैंने पहले बात की थी अपने हवाले से, वो भी बड़ा स्ट्रांगली इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर. और हमारे जो ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स हैं जैसे एमएस वाले हैं या पीएचडी वाले हैं, वो उनके साथ को ऑथरिंग हो रही है. तो एंड लाइक मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ आर स्टूडेंट्स करेंटली एनरोल्ड इन एमएस एंड पीएचडी क्लासेस हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स.
4: बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, नो डाउट.
5: और अब शामिर है जैसे, ये तो अंडर ग्रेड स्टूडेंट है, इनके हाँ भी हम जो है ना एक टर्म पेपर के ऊपर हम बहुत इंसिस्ट करते हैं. और जैसे इस क्लास में इट्स अ ह्यूज क्लास लाइक सम 47 स्टूडेंट्स, तो इनमें से कई बच्चों ने दे आर मोर देन हाफ वे थ्रू देयर रिसर्च आर्टिकल्स.
6: जी ये चीज भी एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशन जो कि हम मतलब स्लाइड रीडिंग भी कर देते हैं अक्सर या क्रैमिंग भी हो जाती है, उसकी जगह वी आर डूइंग एक्चुअली द प्रैक्टिकल वर्क. हम रिसर्च कर रहे हैं जिसका हमें इन फ्यूचर फायदा भी होगा, वी विल नो हाउ टू डू द थिंग्स इन दैट वे. और अगर मैं इसमें क्लास इन्वायरमेंट की बात ऐड कर दूं तो क्लास इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से बहुत फ्रेंडली और कोऑपरेटिव होता है. जैसे आप हमेशा हमें क्या नाम है क्वेश्चंस पे अप्रिशिएट करते हैं और आप खुद इंगेज करते हैं कि मेरे से क्वेश्चन करें, आप इस चीज़ पे खुश भी होते हैं बाकायदा नज़र आता है. तो ये सारी चीज़ें हमारी मोटिवेशन भी इससे आती है कि आप इंकरेज भी कर रहे हैं हमें क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए. और आपकी असिस्टेंस दैट यू ऑफर्ड अस कि आप किसी भी वक्त मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं अदर देन द क्लास, आपको कोई कंसर्न हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे पास आके उस पर गाइडलाइंस ले सकते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग.
5: एंड आई एम श्योर लाइक मेनी अदर टीचर्स आर डूइंग द सेम, डोंट दे?
6: या या दे आर.
5: तो ये इससे हम ओवरऑल जो है ना जो यूसीपी में एक जनरली एक रिसर्च के हवाले से जो एक एम्फेसिस है हम उसके साथ भी डिपार्टमेंट को अलाइन करवाते हैं.
4: Say righto, sir. So as we wrap up today's insightful discussion on Beyond Classroom and ELT research, we hope that this session has sparked new ideas and perspective on how language teaching research that can extend beyond the traditional setting. मतलब काफी कुछ हमने आज जाना कि foreign में किस तरह से पढ़ाया जाता है, हम किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं. तो I hope it was very interesting. Well, a big thank you to our esteemed guests and enthusiastic listeners as well for being a part of this engaging conversation. So please stay curious, keep exploring, continue pushing the boundaries of learning until next time. Because we have already been doing shows aur hum inshallah next time aapke paas ek aur new topic ke saath, kuch aur new ideas ke saath aayenge. So this is your host Nayab Afzal. Keep tuning in for more inspiration and more discussions. Take care and goodbye.

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है. डरे नहीं और चीख के कहें,
2: खबरदार, छूना मना है.
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर.